0: चलो फिर होते हैं। मेरे पास ही किया जाएगा वहाँ का टाइम डिस्क्रिप्शन मिला है। Massachusetts Tigers, 1 Frank Larry Nathan, 8-9, last 2 Jerome Tiger, to watch that concert.
1: Beautiful, thank you. Thank you. 17 challenges.